0: अवां जी स्किन वेल एंड बेरोनक लगे थी हाने पंजी स्किन के लियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ये अवां के रेडिएंट लुक रोजाना जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दिन बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज पार्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा इससे फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा इससे पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा तीनों की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आख़िर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-3879 ऐं 0312-34-01-287 सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली

0: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: मातली आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ऐं घोड़ाबारी वेझो शहरोज ऐं मोटरसाइकिल में टकर हिकु ॼणो फोत बस ज़ख़्मी हादसे में शाम मीर सोढो फोत थी वियो शबीर सोढो ऐं अमीर बख़्श कैरी ज़ख़्मी थिया
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252586
4: जी हा 2331-2525-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अच्छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो। हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस, एक आजमायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 and 0312-1401-287 शिफाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद जिंदगी
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सड़ते सिंध जा वकील एक आवाज़ मुतहद सिंध जो वाज़े पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सड़ते वकील पारा अदालती कार्रवाई जो बायकॉट ए मुजाहरा कराची का कश्मोर ए कारूंजर का केटी बंदर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थो। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद सखर ए लारकानी डिवीजन के समूर नंढन वन अदालत में भी को भी केस न हलो। नंढन वन शहर में वकील जहा मुजाहरा सिंध खिलाफ साजिशू बंद करण जो मुतालबो।

हुकूमत जे आगुरबत जी चकीअ में पिसंदड़ अवाम ते वार जारी। पंजे ॾींहं बि पेट्रोल ऐं डीजल जे अघनि में रिकॉर्ड वाधि करे छॾी। 3.40 रुपया महांगो थियण बाद पेट्रोल फी 367.75 रुपया थी वियो। डीजल 6.72 रुपया महांगो थियण बाद 392.67 रुपया फी लीटर थी वियो। पंजे ॾींहं दौरान पेट्रोल 22 ऐं डीजल 15 रुपया महांगो थियो। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तस्दीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ A-10 3rd बुलेट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फौजीअ खे नुक़सान नाहे पहुतो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर हाकान फिकदान सां राब्तो ॿिन तरफ़ा लाॻापियल समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। परडे॒ही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं हाकान में विच में ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी डे॒ वठि कई वई। सूरतहाल ते सिफ़ारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। सदर आसिफ ज़रदारी लंडन खां ॾे पहुची वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी बरतानिया में एयरपोर्ट जो सिस्टम मुतासिर थियण सबब रवानगीअ में हिकु ॾींहं जी देरि थी वई। वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार कमीशन आॾो पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते कमीशन खां माज़रत करे छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो त अव्हां खे घुराइण जो मक़सद अवाम जो एतमाद बहाल करण आहे। ॾुखियो कम आहे, वारसनि जो बि एतमाद बहाल करणो आहे। कराची में फोरन खीसा खाली हुजण ऐं कुझु बि न मिलण ते शहरीअ खे क़तल करे छॾियो। कोरंगी में हथियारबंद फुरलुट करे रहिया हुआ त हिकु शख़्स वटां कुझु बि न निकितो। फोरन बहस करण ते शहरीअ खे गोली हणी क़तल करे छॾियो। ज़रियनि मूजिब फोरन शहरीअ वटां कुझु बि न मिलण ते खेस क़तल कयो आहे। मलीर जी अदालत कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर ते हमले में मुलविस जवाबदार वक़्ती ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। अदालत पारां 20,000 जा मुचलका जमा कराइण जो हुकुम। लाॻापियल केस में सहकार जी हिदायत। केस जी ॿुधणी 21 सेप्टेम्बर ताईं मुल्तवी। कराची में एमपॉक्स जो वधीक हिकु केस रिपोर्ट। सरजानी टाउन वासी 45 वर्ष जे शख़्स में एमपॉक्स जी तस्दीक थी वई। अस्पताल इंतिज़ामिया मूजिब मरीज़ जे जिस्म ते दाणा ज़ाहिर थियण बाद कराइल टेस्ट में एमपॉक्स जी तस्दीक थी। मरीज़ खे आइसोलेट कयो वियो आहे।

0: जापान में एक कलाक की बरसात तबाही मचाए छी। रोड रस्ता तलाव बणजी वया। जापानी शहर नागोया में बरसाती पानी इमारतन मेट्रोपोलिटन स्टेशन शॉपिंग मॉल्स में दाखिल। कार बुमार मुफलिस बणजी वियो। रोड रस्तन ते बीठल गाड़ियूं बुडी वयूं। जापानी इख्तियारनि पारां अॼु बि बरसात जारी रहण जी अक थी। पीअर बोर्ड जी वार्निंग जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086-3163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-2525-786।
2: जी हा, 2331-2525-786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086-3163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

पसंद तेरी फिदा हूँ। ये महफिल तेरना तू बोले तेरे लिए सब खोना चाहूँ। बुला के सदन सरे जान दे चले चले रात तज मगर।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिंध बार जे सर ते सिंध जा वकील एक आवाज मुतहद सिंध जो वाज़े पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सर ते वकीलन पारा अदालती कार्रवाई जो बायकॉट ए मुज़ाहिरा कराची का कश्मोर ए कारूंजर का केटी बंदर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थो कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद सखर ए लाड़काने डिवीजन जे समूरन नंढन वरन अदालतन में को भी केस न हलो नंढन वरन शहरन में वकीलन जा मुज़ाहिरा सिंध खिलाफ़ साजिशों बंद करण जो मुतालबो हुकूमत जा गुर्बत जी चकी में पिसजंदड़ अवाम ते वार जारी पंजे डीएम भी पेट्रोल एंड डीजल जे अघर में रिकॉर्ड वाध करे छी 3.40 रुपया महंगो थियण बाद पेट्रोल फी 367.75 रुपया थी वयो डीजल 6.72 रुपया महंगो थियण बाद 392.67 रुपया फी लीटर थी वयो पंजे डीह दौरान पेट्रोल 22 एंड डीजल 15 रुपया महंगो थियो उर्दन में अमेरिकी अडे ते ईरानी हमलन के नतीजे में अमेरिका के केतरन ही फौजी जहाजन के नुकसान पहुंतो है अमेरिकी मीडिया तस्दीक करे छड़ी सीबीसी न्यूज पेंजी रिपोर्ट में जानायो है ते ईरानी मिसाइल हमलन में अमेरिका जा F-15 जहाज A-10 3rd बुलेट मुतासिर थे जडे ते कें भी अमेरिकी फौजी के नुकसान न है पहुंतो नायब वजीर आजम इसहाक डार जो तुर्किया के परडेही वजीर सा राबतो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बोल परडेही खाते मूजिब इसहाक डार ए हाकान विच में ओभर के तब्दील थन्दड़ सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई हुई सूरत हाल से सफारतकारी वो सिलसिलो जारी रखने से इतफाक सदर आसिफ अली जरदारी लंडन का डेह पहुंची वो सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानिया में एयरपोर्ट्स जो सिस्टम मुतासर थियण सबब रवानगी में एक डी देर थी हुई सिंध जो घरू वजीर ज़ियार लंजार तलबीए ते मीर रज़ा केस की जांच कंद अदालती कमीशन आरो पेश ज़ियार लंजार एडवोकेट जनरल के रवैये ते गैर मशरूत माफी वठी छी जस्टिस उमर सियाल अवां के घुराण जो मकसद वारसन अवाम जो एतमाद बहाल करण है एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर जिम्मेवारानो आमेज़ हो घरू वजीर ज़ियार लंजार सिंध हुकूमत केस की शफाफ जांच चाहे थी कमीशन के नतीजन ताई पहुंचण जरूरी है जिम्मेवार मुनफती अंजाम ताई पहुंचाया वो मीर रज़ा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा डॉक्टर उसामा के जवाब से बेतमादी जाहिर 15 सितंबर से जाती हैसियत में तलब कमीशन SHO अदील हेड मोरर जिशान डॉक्टर सीमा ए प्रोफेसर नसीम के 14 सितंबर से तलब करे वरतो कमीशन के रजिस्ट्रार है शहरी भी केस बाबत जान डेण शुरू कर छी है एक शहरी पारा अकाउंट्स भी जान फराहम करण से राजपो जाहिर किया शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबत जान डिनी एक शहरी केस में मशकूक शख्स की भी निशानदेही कई कमीशन जान डींदड़ शहरी की सुणप गुझी रखने जो फैसलो किया कराची के एहतसाब अदालत क्लिफ्टन में प्लाट के गैर कानूनी अलाटमेंट वे केस में वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल बेन के नोटिस जारी कर छो मुस्तफा कमाल ए बया 15 सितंबर से तलब एहतसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल SBCA जी अगोड़े डी जी इफ्तार कायम खानी अगोड़े DCO फजुल रहमान KDA जे अगूणे DO मुमताज हैदर KDA जे एडिशनल DO सैयद निशाद अली रिज़वी मोहम्मद रफीक ए बेन के भी तलब कयो कराची में फौरन खीसा खाली हुजण ए कुछ भी न मिलण ते शहरी के कतल करे छड़ियो फौरन जी में हथियारबंदन फुर लुट कर रहा हुआ ते एक शख्स वटा कुछ भी न निकतो फौरन बहस करण ते शहरी के गोली हणी कतल करे छड़ियो ज़रीन मौजूद फौरन शहरी वटा कुछ भी न मिलण ते केस कतल कयो आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
5: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
4: आवाज की डोर से बंधा हुआ
6: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
6: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ा मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ा मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराकर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ा मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
9: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
10: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
10: जी हा, 2315525786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दोपहर का टाइम है, वाइब्स है फुल ऑन।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों की बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों की बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बतंदर तमाम खूबसूरत मासूम वही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। गुरुकुल दुआ के संबंध है चाहतों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से चार तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, पेश किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाती हैं जनाब प्रोग्राम में। अगर आप भी जाना चाहते हैं, अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो आप क्यों और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम बातें इस प्रोग्राम में आप लोगों को मालूम पड़ने वाली है। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं जो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग डायरेक्टर यो आर जे एंड योर डी जे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो बिल्कुल जी, ब्यूटीफुल बनने के लिए रेडी शेडी हो जाइए। वैसे भी कहते ना खूबसूरती के लिए आजकल के लोग जो है ना वो कुछ भी कर रहे हैं। वैसे खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो आजकल खूबसूरत होना आसान भी हो चुका है। अगर आप मार्केट चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं जो कि भाई बताया जाता है कि दावा किया जाता है कि ये जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आप उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो आपके चेहरे पर जो है ना वो हेवी से नुकसान आपको नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए हम लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करता है, जिसमें आप लोगों के लिए मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर से फुल जनाब अप्रूव्ड किया हुआ प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि वाकई सिद्रा जो बता रही है बिल्कुल सही बता रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और आप लोगों से भी पूछने वाले हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने सोचा है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है या फिर कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल कराना बाकी है। ओके जी, तो रेडी हो जाइए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपका हमारे साथ होगा जी प्रोग्राम में पूरी पूरी 3 बजे तक, 2 घंटे हमारे पास मौजूद है। 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करेंगे लाता दसी बातें और ना सिर्फ प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती है बल्कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाते हैं, आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं, आप लोगों से कुछ पूछते हैं, कुछ आपको बताते हैं और ऐसे ये सिलसिला जारी और सारी रहता है जनाब पूरी पूरी 3 बजे तक। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम पे कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल जी, आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं पर ऐसा करते हैं आगाज प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगाज प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक प्यारा सा कसीदा एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें हो रही है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। तो हाँ जी, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे उसकी जानिब जरा आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछ रही हूँ। तो अगर आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होने वाला है, तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप मुझे बताएं। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसा होता है ना, आप लोगों ने भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे। वैसे ये तो एक कॉमन सा झूठ हो चुका है आजकल, अगर आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो आगे वाला इंसान अगर आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ पहुंचे हैं या फिर कब आ रहे हैं, तो आगे से आपने बोलना है 5 मिनट, हालांकि आप घर बैठे होते हैं। ये तो एक ऐसा झूठ है जो मुझे लगता है कि हर कोई रोजाना क्या मतलब बार बार बोलता ही होगा। तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो बिल्कुल होगा कि आप मुझे बताएं कि अगर झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आज आप एक दिन के अंदर जो है ना वो कितनी फाइन भरते, आपको क्या लगता है, ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आप रोजाना कितने पैसे भरते। ओके जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जैसे आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जी, जब आप हमारे पेज पर आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, ऐसे सबको बताइए कि भाई मार्केट में आ चुके हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाती है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ना। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई आपकी स्किन जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो काफी सेंसिटिव है, हम तो कोई प्रोडक्ट लगा ही नहीं पाते, तो हमारी तो काम की ये बात होगी नहीं। तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन है जनाब जो कि आप लोगों के लिए मेडिकेटेड फार्मूला है। जब आप जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा, ये जो प्रोमो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रही है, तो इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किस तरह से अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, और ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि ये जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का फार्मूला तैयार किया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के बहुत ज्यादा वाले जो है ना वो फायदे आपको मिलने वाले, और साथ ही साथ अगर आप भी इस्तेमाल करें तो हमारे साथ शेयर कीजिए कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आप रابطہ कर सके और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके। तो जल्दी जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25 970 आई बी ओ नंबर आहे 033-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ओके जी। सो जल्दी से नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी से परचेज करके आइए। ओके जी, तो यहाँ पर प्रोग्राम में आज बात हो रही है, टॉपिक जो आप लोगों से पूछा है, टॉपिक ये पूछा है कि आप मुझे बताइए। हाँ जी, आपने आज थोड़ा सा हिसाब कर लेना है कि आप बैठिए और आप सोचिए कि आप दिन में कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं। तो अगर एक झूठ बोलने पर आपको 100 रुपए की फाइन लगती, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि एक दिन में तकरीबन आपका कितना हिसाब होता है कि भाई मुझे कितने पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अंदाजा होगा ना कि आप कितने झूठ बोलते हैं। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हमें ज्वाइन कीजिए 8881 और फेसबुक पर। बिल्कुल सी आपके मैसेजेस मुझे ना मिलते जा रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो ऐसा किया करें, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। भाई लाइक आप लोगों का जो होता है ना वो मेरे लिए बहुत मायने रख रहा होता है, तो पोस्ट को लाइक जरूर कर दिया करें। और उस उसके बाद एक आधे दोस्त को हमारी पोस्ट को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो भाई उन्हें भी पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले बताइए जरा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं? ओके जी, यहाँ पर अखलाक बलोच हमारे साथ माजूद है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में माजूद है जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और फरवा गुल कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। आप ही आप कैसी हैं? होप यू आर फाइन, यस गुड, आप बताएं कैसी हैं। मोहम्मद मीरन जखरानी में सुन रहे हैं, जेकब आबाद से भाईजान को वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो कहते हैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर। और फरवा गुल कहती हैं आप ही आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, आप मेरा गाना नहीं चला रही हैं। गाना ना चलाने की वजह ये नहीं होती कि मैं आपसे नाराज हूँ, बस वो ऐसे नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें होती हैं। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सलामत अद छाला खुश सफा चाक स्लेट कलम भाऊ क्यों सफा लाजवाब आहे अम्हा वांगे। अम्मा वांगी यानी थोड़ी तारीफ करे वरी हेठा तव गाने की फरमाइश करी छी आई सही आ बाबा सही आ। अब्दुल्ला अली हमारे साथ है, ओके जी, अब्दुल्ला अली कहते हैं, हाँ जी लिखते हैं कि लोग बिछड़कर भी बिछड़ते नहीं, वो याद बनकर दिल में हमेशा रहते हैं। अब्दुल्ला शेर क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथ हैं जी अखलाक भाई कहते हैं छड़ा ताना अंदर साढ़े छह दिन था घर वारा ये नहीं सुठो तासानी प्रोग्राम में अच्छी वेंदा आयो। और गुलाम हुसैन अबड़ो लिसनर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम हो गया। और कासिर खान हमारे साथ है, हाय हेलो। और शुएब मंगी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मुस्कान बिल्कुल ठीक ठाक है। शो सजाद अली साजिद का गाना सुनाएं, चलें ठीक है जी, आपकी फरमाइश भी लगा दी जाएगी। और अच्छा फरमाइशें जो लोग कर रहे हैं ना वो मुझे ये भी बताएं कि आप पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं नहीं, और साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कब करने वाले हैं, क्योंकि एम ही आकर फरमाइशें कर देते हैं, कुछ तो बदले में होना चाहिए ना। ओके जी, स्मार्ट किशोर भाई हमारे साथ कहते एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, दुनिया का कोई भी शख्स मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता। सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आए बुद्धि करे करना खुश थी गया थैंक यू थैंक यू। और कासिर खान कहते टॉपिक करोड़ों का फाइन भरते, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। अच्छा अखलाक भाई कहते आंसर लगभग 100 रुपया, बस एक झूठ बोलता हूँ, चलो ये हो भी सही है। और फरवा कहती टॉपिक आप ही, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलना बुरी बात होती है, चलें ये भी सही है। और रशीद खोसो कहते हैं अभी हम दिन में 10 मरतबा झूठ बोलते हैं तो 1000 लग चुका होगा। अच्छा, और हिदायतुल्ला कहते हैं सलाम कैसी हो सके तो मेरा एक काम करो, ये सॉन्ग प्ले करो मेरे नाम करो। ओके ओके, आप ऐसा करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें और हो सके तो ये आप आज ही कीजिएगा। और किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुंजो तकरीबन 2 या 3 हज़ार थी वेंदो, अल्लाह एडो कूड़ गालाईंदा आयो। अच्छा अब्दुल्ला कहती हैं आप मेरे पापा का नाम क्यों अनाउंस नहीं करती प्रोग्राम में, वो क्या है थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल सा लगता है। अच्छा मैं देखती हूँ क्या है आपके पापा का नाम। अकरी चौधकी खां अली गुलाब शर अब्दुल्ला शर असगर मौजूद हैं, ठीक है बहुत शुक्रिया। अच्छा आपके पापा का नाम है अली गुलाब शर, ओके थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी करीबी जनरल स्टोर पर मिल रही है नहीं, मुझे जल्दी से बताइएगा। और उसके अलावा अगर नहीं अवेलेबल तो आप जरा ऐसा कीजिए थोड़ी सी हेल्प कर लिया करें मेरी, और अपने ना करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा लिया करें। उसके बाद आप ऐसा कीजिए हमारे साथ मौजूद रहिए, टॉपिक को फॉलो करते जाइए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यहाँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सखरन बहरा पर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वेलकम कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानब अगर हम आते हैं तो बिल्कुल सी आपको बताते हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा, तो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था वो भी जरा रिपीट करते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें। तो अगर आज हमारी सवाल आप लोगों को बताएं तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं, अगर आप जरा इस चीज को नोटिस करें और काउंट करें कि रोजाना हम लोग कितना झूठ बोलते हैं ये चीज कभी हमने नोटिस नहीं करी होगी शायद। तो अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए की फाइन लगे तो आपको क्या लगता है कि डेली आपका कितना खर्चा हो जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे, ये चीज आपने मुझे बतानी है। ठीक है, तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते रहिए। आपके मैसेजेस और प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे मिलते जा रहे हैं जिन्हें हम शामिल प्रोग्राम जरूर रखेंगे। ओके, सो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है जी मार्केट में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है। ये दो प्रोडक्ट मार्केट में है जो कि आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा फार्मूला है जिसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। आप लोगों को इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा कि जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स अगर आप वहां देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये हमारे काम की चीजें है ही नहीं। और उन्हीं चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि भाई सारी ही नाइट क्रीमें ऐसी होती हैं, सारी ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, उससे इतने सारे प्रोडक्ट के अंदर उसमें से जो है ना वो सही वाला प्रोडक्ट परचेज करना, सही वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सही वाला प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सही वाला प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल ही मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ना सिर्फ नाइट क्रीम है बल्कि ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर जो ये वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं ये वो फार्मूला है, वो चीजें हैं जो कि भाई आप लोगों के लिए, खास करके खवातीन जो महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं ना, और आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई महंगे महंगे फेशियल्स कराएंगे तभी हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपको महंगे से फेशियल कराने के बाद आपको निखार मिलता है। अब ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, आप इतने पैसे भी नहीं लगा सकते हैं, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये 2-in-1 क्रीम है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपके पैसे भी बचाती है, आपका वक्त भी बचाती है, और आपको खूबसूरती भी वो वाली देती है जो आपकी खूबसूरती की हिफाजत करती रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल सेफ फार्मूला है, आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लाजमी कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीकेकार वो भी सर आप लोगों को बताते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब ये नाइट क्रीम है ना, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे भी सही फार्मूला यही है कि अगर आप रात के टाइम इस्तेमाल करें तो सही होगा। सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिएगा, साफ करने के बाद अपने चेहरे को सुखा लीजिए, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार प्यार से लगाइए, और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर किसी नजर आनी चाहिए। क्रीम को पूरा ही स्किन के अंदर जज्ब नहीं कराना होता, इससे भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कि जब आपके हाथों की हीट आपके फेस पर आती है ना, जब आप रगड़ते हैं, मसलते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, अच्छा सा आपको निखार मिले, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आराम से हल्के हल्के हाथों से इस्तेमाल कीजिएगा। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा। और
वर्जन आप अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ सुथरी हो, अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि आपकी जल्द जो है ना ये डिजर्व करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो और मजीद जो प्रोडक्ट आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हेवी सा फार्मूला है, तो उनको जरा बाय बाय कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हाय हाय कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ठीक है। चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, ये भी चीज जरा थोड़ी ऐसा होता है कि भाई आप सोचते हैं कि हम मर्द हजरात हैं तो क्या हम लगा सकते हैं, हमारे लिए है बताएं तो जरा। तो बिल्कुल जी, आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो इसमें आप मर्द हजरात भी शामिल हो जाते हैं। तो मर्द हजरात भी लगाएंगे, खवातीन भी लगाएंगी, सब लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और बोलिए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-273-4309 आप ये सोचेंगे बीच बीच में क्या हो जाता है भाई सिद्रा को, बीच बीच में सिद्रा थोड़ा सिंधी जो है ना वो कमजोर है हमारी, कुछ लोग कमजोर होते हैं, कुछ का दिमाग कमजोर होता है, हमारी थोड़ी सिंधी कमजोर है। चलें कोई बात नहीं, आपको सुनाते मजे मजे के गाने आप लोगों के साथ करते हैं बातें, और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ तक पहुंची, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके नहीं। आप ऐसा कीजिए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, कंजूसियां यहाँ पर नहीं बनती।

आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें जनाब, आपकी खूबसूरती में इजाफा क्या मतलब बहुत ज्यादा वाला इजाफा आ जाएगा. और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, तो यहाँ पर सगीर अहमद हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप ही, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते हैं आपका प्रोग्राम अमेजिंग है. आप ही आपका प्रोग्राम बचपन से सुनता आ रहा हूँ. सगीर अली खरल फ्रॉम लाड़काना, बचपन बोलकर मेरे को ऐसा फील कराते मैं बड़ी बुढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा भी बचपन था. जी जी, हम सब का बचपन था. अच्छा, फरमा गुल कहती हैं आप ही, आपका शो शेयर और लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच प्यारी. अरशद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अरशद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? कहते हैं नाइस शो फ्रॉम खैरापुर सिटी. ओके, क्या बात है. और किशोर भाई कहते हैं कि मैं वो झूठ बोलता हूँ जिससे लोगों को खुशी मिले. जैसे हम रिश्तेदारों की तारीफ करते हैं, अपनों का दिल रखते हैं, ऐसे समझी ना चरी. जी जी माँ, समझी वैसे.

ये बात बिल्कुल सही है कि हम डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं, इतने झूठ कि हमें अंदाजा भी नहीं लगता कि भाई हम कितने सारे झूठ बोल चुके होते हैं। जी जी, कोशिश किया करें थोड़ा सा सच बोले, थोड़ा सा, आधा किलो। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और गुलाम अकबर खास के लिए कहते हैं, शायद आखिरी हो जे ही सितम उन्हें जो इहो सोचे हर सितम सहंदा रहा सी आईली। और उनका अलावा आरजे सारंग अकबर हमारे साथ ही कहते हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट फ्रॉम स्टूडियो ऑफ एफएम 90 नूरियाबाद, कनेक्टेड योर शो। ओके, आपने हमारा प्रोग्राम कनेक्ट किया है, क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं, सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करें। नूरियाबाद के लोगों को सही से प्रोग्राम सुनाया करें, ठीक है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, वेलकम कहते हैं आपको।

ये खास के लिए कहते हैं अंदाजो ही कोने बाबा कूड़न जो टॉपिक ते गालायो था सही सही अली रजा कहते हैं अली रजा आप हमें दुबई से सुन रहे हैं मुख्तियार अली शीदी का गाना सुनना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगी आप सब भाइयों की फरमाइशें लगाएंगे और गुलाम फरीद बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल चाल है आपके सारे लोग ठीक है आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है थैंक यू और हमारे साथी जी अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तू जे

जी हजूरी बाबा ऐं ॾियो हाल अहिवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई अथव कोन इते ई त हामी भरियो कंहिंजो बि हिते ॾिसजो वात कोन खुलंदव

जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अनवर भाई आपका मैसेज अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम करते हैं। सिद्धार्थुल्लाह कहते हैं कि ये बड़े एक साथ हो रहे हैं। हाँ हम सब बड़े एक साथ हो रहे हैं, सही बात है। मैं मतलब सही है, कुछ नहीं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ऐसा ही कि फिर मुझे सुनने को मिलता है कि आप प्रोग्राम में सिर्फ मैं कर दिए मैं बकरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और अनवर भाई कहते हैं कि मोहल्ले की मोहब्बत का भी एक अलग ही फसाना था। हाँ जी सही बात है, सही बात है, बचपन बड़ा शहाना था, खिलौने तोड़ देता था नया लेने की जिद में। मुझे भी याद है मैं किस कदर नादान होता था, मासूमियत और तड़प लोटा दी कोई मुझे। वो बचपन के दिन, ना कोई फिक्र थी ना कोई गम था, अब तो बस हसरतें ही हसरतें हैं दिल में। काश वो हो, फिक्री का जमाना फिर आ जाए। हाँ भाई ये काश ही रह जाती हमारी जिंदगी के अंदर। कोई नहीं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, ऐसा नहीं कि फिर आपकी जिंदगी में काश कि काश ऐसा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलूंगा सुधा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो सैया। अच्छा सगीर कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, मगर फिर भी कभी कभी 100 का फाइन लग सकता है, मगर फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि ये 100 का फाइन भी कभी ना लगे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, यू बुद्धि डाडू भलो लगो अल्लाह। और सारंग अकबर कहते हैं कि डन, नूरियाबाद वाले शो को कैसे ज्वाइन करें काइंडली हाईलाइट करें। जी नूरियाबाद वाले आसान तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते, एक तो ये हमारा लाड़काना का पेज है, जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप नूरियाबाद वाले सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा ये जो फेसबुक वाला पेज है ना ये मिल जाएगा, और वहाँ पर आप आकर हमारी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अदरवाइज अगर आप हमें सिंपली मैसेज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन आइए, सबसे पहले आपने लिखना है LRK। ओके जी LRK लिखिए, उसके बाद सिंगल स्पेस दीजिए, अपना पूरा मैसेज लिखिए विथ नाम, और उसके बाद अपना मैसेज जो है वो सेंड कीजिए 8881 पर। बिल्कुल जी, ये सिंपल से तरीकेकार हमारे सिंपल से प्रोग्राम में शामिल होने के, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताइए नूरियाबाद में कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप तैयार हो सकेंगे, हाँ जी भाई जान हम भी लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे ताकि हम भी खूबसूरत हो जाएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और पहली मरतबा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके लिए मार्केट में, और इनफैक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जो कि बनाए गए हैं इस तरह, जिनका फार्मूला इतना मजेदार रखा गया है कि ये 2-in-1 है, यानी कि अगर आप ये नाइट क्रीम लगाते हैं तो बस इनफ हो जाता है, आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेशियल वाला जो निखार है ना वो मिल जाता है, आपको अलग से कोई फेशियल करने की नीड भी नहीं होगी। तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप परचेज करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप खवातीन हैं चाहे आप मर्द हजरात हैं।

डोले के पानी मर्जी ते नर्सरी न कयो डोलो मथे ते चढ़ी वेंदव किशोर भाई कहते हैं कि मायूं चवंदियूं आहिनि तो केड़ी हाय लगी आहे तोखे केड़ी हाय लगी आहे न उहा हाय उन हाय जी ॻाल्हि नाया कंदे वैसे त अमी चवंदी आहे कंहिंजी हाय न वठजे बिल्कुल वैसे ई उहा हाय न हीअ ॿी हाय जेका हेलो हाय वारी हूंदी आहे हिते अगरि असां पंहिंजी ज़बान में मुंझी वञूं त समझो असां आलसी आहियूं बिल्कुल मां बि इहो ई चवंदी आहियां और म्यूज़िक जी तारीफ़ कई आहे तव्हां वाह वाह वाह वाह अहिड़ी ॻाल्हि कंदा न त पोइ मां इलाही सारा तव्हांखे अंग्रेजी गाना ॿुधाईंदीमांव

रुपए जो हिकिड़ो फाइन एक्स्ट्रा लॻाईंदव त कहिड़ो तव्हांखे ॾोह मिलंदो? 100 रुपए हिकिड़ो एक्स्ट्रा भरियो, ठीकु आहे? समझी वया हूंदा। चलो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। कंजूसी कंदा आयो ते तव्हां असांजी पोस्ट खे लाइक न कंदा आहियो। अलाह सही ॾोह ॾींदव अलाह।

चंडर भाई कहते यदि आम के साथ रोटी खाओ तो सलाद हव अन्य तयम हलनता छा भला फहीम भाई कहते दादा टॉपिक बताओ मैंने नहीं सुना काम से गया हुआ था टॉपिक छुआ तो तमाम मुख्य बुधायो अगर एक कूड़ गालाने ते 100 रुपयो फाइन लगे तो तमा अंदाजो लगाए तमा डी में केतरा पैसा जको ना वो फाइन दई छडियो आ छो तो मानो हर को डेली इलाही सारा कूड़ गालाइंदो आए ठीक है सो तमा जल्दी जल्दी मुख्य बुधायो इन का अलावा तमा सनी पोस्ट के लाइक शेयर के नालो जिन खोड़ सारा मानो सा की प्रोग्राम में ज्वाइन करे सगन खोड़ सारा मानो बुधी सगन तो मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जाने चर्चा हली रहा है इतने टाइम थे बाबा वनू था असा न्यूज ब्रेक की तरफ उनका शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुआ वापसी जल्दी मोटी तमा नींदी तमा कारे नंजो इतने वेठा हो ओ ही वनी ओ ही मोटू था सो स्टे यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बायकॉट ए मुजाहिरा कराची का कश्मोर ए कारुंजर का केटी मंदिर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थे। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद सखर ए लाड़कान डिवीजन के समूरन नंडन वरन अदालतन में को भी केस न हलो। नंडन वरन शहर में वकीलन जा मुजाहिरा सिंध खिलाफ साजिशों बंद करण जो मुतालबो। पाकिस्तान ए सऊदी अरब जो दिफाई सहकार जारी है। दिफाई मुआहदे ते अमल दरामद लाए वक्त घुर्बल है। पर तर्जमान सजाद हैदर खान पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तियारी सलामती लाए हिमायत जारी रख। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती लॉजिस्टिक सहूलत लाए मौजूद है। पाकिस्तान सऊदी से उसी हमलन की मजम्मत कर चुको है। अफगान शागिर्दन से भी पाबंदी वारी खबरों दुरुस्त न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑटो पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे छी। ऐलान IMF की मंजूरी बाद कयो वेंदो। ऑटो पार्ट्स के बरामदाद वधाने लाए आर्मी वैल्यू चेन जां गढ़ण पंज वड़ा एंकर इदारा ठाण की तजवीज। बरामदे ऑटो पार्ट्स से दरांदी वेंदी ड्यूटी खत्म करण की भी सिफारिश थियल। उर्दन में अमेरिकी अडे ते ईरानी हमलन के नतीजे में अमेरिका के केतर ही फौजी जहाजन के नुकसान पहुंचो है। अमेरिकी मीडिया तस्दीक कर छी। CBC न्यूज पैंजी रिपोर्ट में जानायो है ते ईरानी मिजाइल हमले में अमेरिका जा F-15 जहाज A-10 थर्ड बोल्ट मुतासिर थे आहन जडे ते कहे बे अमेरिकी फौजी के नुकसान न है पहुंचो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
5: जी हा, 2315525786।
4: जीए FM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज।

बिल्कुल जी, सो नंबर से राबतो कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, तव्हां वञी आसानी सां परचेज करे अचो, ठीक आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजे खूबसूरती जे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे, तव्हां सभु इस्तेमालु करे सघो था, हर स्किन जे मुताबिक़ आहे ऐं तव्हांखे यकीन ॾाढो फ़ाइदो पहुचंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जेका तव्हां इस्तेमालु कयो पिया, ऐं ॿुधायो मूंखे हाल अहिवाल, किथे पहुती, केरु केरु इस्तेमालु करे पियो, इस्तेमालु कई आहे या फिर अञा ख़ाली सिर्फ़ ॿुधो पिया ऐं मतिलबु सोचो पिया त हा असां बि वठी ईंदासीं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्दी कयो बाबा, वठी अचो। ऐं हिते अगरि असां तव्हांजे मैसेज जी तरफ़ अचूं था, त पैनल ते तव्हांजा खोड़ सारा मैसेज जमा थी विया आहिनि, ऐं पैनल ते असांखे ज्वाइन कयो आहे। सभ खां पहिरीं असांखे मैसेज मिलियो आहे कश्मोर से अखलाक बलूच, कंहिं ताईं प्लीज प्ले। ओके, तव्हां गानो लिखियो आहे, मां बिल्कुल कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाईंदासीं। और हमारे साथी जी सिदरा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम, मुलैल सलाम अदर, बेवस बलूच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से, आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह इलाही भली आहे। सो थैंक यू वेरी मच, प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु कंदा रहिजो। और शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद हैं, फैजान अली रिंद, ओके जी, आपने लिखा है कि आपका शो जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच जी भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। ये मौजूद है, हाय आप ही, हेलो आप कैसी हैं। सुल्तानपुर से सितारा हमारे साथ है, ओके जी, सितारा कहती है योर शो इज वेरी नाइस, आप ही जान प्लीज प्ले मास्टर मंजूर का सॉन्ग सुनाओ। ओके, मां ॾिसां थी तव्हांजे लाइ मास्टर मंजूर जो भलो गानो हलाए वठंदासीं, ठीक आहे। और ये हमारे साथ है, अच्छा जब आप पैनल पर मैसेज किया करें ना, तो अपना नाम लाजमी लिखा करें, बिना नाम के जब आप मैसेज भेज दें तो मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ, ये किसने मुझे भेजा है। अच्छा, गुलशेर बाबर हमें कहते हैं कि मुजम्मिल बाबर विलेज अल्लाह वरायो बाबर खां तव्हां सॼो प्रोग्राम ॿुधो पिया, तव्हांजो मैसेज मूंखे लॻे थो अॻे ते मिसिंग पार्ट थी वियो आहे, पर मूंखे एतिरो मिलियो आहे, सुभाणे जो मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम रोज़ सुनता हूं, वेरी नाइस, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है। ओके जी, नाम तो अपना लिखना भूल ही गए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा। और हमारे साथ ही हमारी फजली कहती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं। कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को। और कहती टॉपिक क्या है जानी, टॉपिक मैंने फजली आपसे पूछा है, वैसे आपने नहीं सुना इतना टाइम इतने टाइम से प्रोग्राम सुन रही है, तो सवाल हाँ बिल्कुल रिपीट करते हैं, जो लोगों ने अभी भी प्रोग्राम सुना है, स्टार्ट किया होगा उनको भी पता होना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि हम डेली बेसिस के ऊपर कितने सारे झूठ बोलते हैं, ना बोलते ना बिल्कुल से, तो आप मुझे बताएं कि अगर फर्ज कर लीजिए एक झूठ बोलने पर 100 रुपए की फाइन लगती, तो आपको क्या लगता है कि आपका एक दिन का हिसाब काथे वनी पहुंचे, हाँ तव्हां केतिरा कूड़ ॻाल्हाईंदा आहियो, तव्हां ते डिपेंड करे, तो मूंखे ॿुधायो त हिकु ॾींहं में तव्हांजो हिसाब किथे पहुचे, हा ॿुधायो त ख़बर त पवे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई आहे कोन, अगरि मैसेज कयो पिया त इहो बि लाज़मी ॿुधाए छॾिजो। उन खां अलावा हीउ ॾाढो भलो गानो लिस्ट में लॻायो आहे, सो गानो ॿुधूं था।

मकसूद मला कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है सदरा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना। बिल्कुल जी, आपको शमन का गाना सुनाते हैं और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं सारे लोग, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बता दिया करें जैसे मकसूद मला ने बता दिया है। ओके जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

ओके जी, गानो मां समझण जी कोशिश कयां पई पर चलो मोरो त समझ में आयो, पर अॻिते अलाए छा थो चए, मोरो शहर छॾे वञे थो या अचे पियो, ॻाल्हि समझ में कोन आई। चलो मोरो में बि तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम सां मिली वेंदी, अगरि तव्हां मोरो वञो पिया या मोरो छॾियो पिया त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़रूर वठंदा वञो पाण सां गॾु। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेके माण्हू इस्तेमालु कनि पिया, बाबा सफ़ा सुहिणा थी विया आहिनि, त तव्हां बि इस्तेमालु कयो, सुहिणा सुहिणा थी वञो, रीस कोन थी अचे, छा बिल आहे। अच्छा गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि कुछ चीजें मालूम नहीं महसूस की जाती हैं, जैसा कि किसी की जिंदगी में अपनी जगह, बदलता रवैया, लहजे में बेजारी और अजनबियत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कासिर खान कहते हैं राजा लंदन का ओएसटी लगा दो, बिल्कुल सी लगाते हैं। परवा आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि नेटवर्क खराब था नी तो हर सवाल का जवाब है बुआ जी क्या मतलब अच्छा नसीम गुलाम हमारे साथ हैं, कहते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जानी पहचानी लगती है। क्या बात है जी, क्या बात है, कितनी कमाल बात आपने बोल दी है और बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते हैं कि अगर तू चए पोस्ट के लाइक एंड शेयर करण वारन के 100 रुपया ॾींदस त ॾिस केतिरा लाइक एंड शेयर था मिलनि बिल्कुल तव्हां सही था चओ। और रमज़ान भाई कहते हैं कि सलाम बहनाओ, कैसी मुल इस्लाम अदस, मैं कल आपसे गाने की फरमाइश कर चुका था। बिल्कुल जी, आपने गाना बोला मेरे पास तुम, इतने थके हुए गानों की फरमाइशें मुझसे करते हैं तो वो मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो अच्छी अच्छी गाने फरमाइश किया करे जो सुनकर सबको अच्छा लगे। और नसीम गुलाम भाई कहते हैं कि गोठ अली बख्श जकड़ो नूरियाबाद से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं घणे टाइम खां पोइ नज़र आया आयो नूरियाबाद FM ते, असां थकिजी वियासीं इंतज़ार करे। हाँ कुछ टाइम पहिरियां वाकई नूरियाबाद ते मुंहिंजो प्रोग्राम ईअं कनेक्ट थियो, जीअं ही प्रोग्राम कनेक्ट थियो आहे। सो थैंक यू, तव्हांखे यादि आहियां, मूंखे लॻो नूरियाबाद वारे माण्हुनि विसारे छॾियो हूंदो। थैंक यू, थैंक यू, ॿुधी करे इलाही सुठो लॻो, थैंक यू। अच्छा तव्हां हाणे नूरियाबाद में बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से मालूमात वठो, तव्हांखे मिली वेंदी, ऐं मिलण खां पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त भाजी असां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आया आहियूं। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु करण जा तरीक़ेकार छा आहिनि, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां छो इस्तेमालु कयो पिया, इहो बिल्कुलु सॼे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी अचां पई। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूं हर कोई लॻाए सघे थो, इहा बि जेका कंफ्यूजन हूंदी आहे त बाबा असां लॻाए सघूं था या नथा लॻाए सघूं, छो त काफ़ी माण्हुनि जी स्किन घणी सेंसिटिव हूंदी आहे, त तव्हांजे लाइ बि आहे बाबा, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तयारी ईअं कयो वियो आहे जो हर स्किन जे माण्हू लॻाए सघे थो, ऐं मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, स्किन जा जेके डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि ई फार्मूलो तयारु कयो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम आहे, तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो अहिड़ो ॼण तव्हां फेशियल कराया आहियो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: बिल्कुल जी असा तुझा ताबेदार पर जदी ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठना पो असा के गाल खबर पंदी त वाकई ता ताबेदार आयो। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा ऐसे टॉपिक रखकर आप ये जानना चाहती हैं कौन कितना झूठा है। मेरा आंसर भी तकरीबन 1000 पक्का हाल यो सही मतलब लिमिटेड आयो थोड़ो एडो ना है यानी कि तहां वेही अगर ई हुजिया वाकई मानो एकड़ो कूड़ गलाए हां त 100 रुपयो फाइन देनो पवेया त दोस्तन में वेही करे खबर ते जे ड्राड़ी मानो जना उ केड़ी ड्राड़ हड़ना त तो खबर आ म केड़ो अमीर आ म डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ गलाइनो आ मानू चवंदा वाह वाह वाह वाह वाह वाह बाकी अमीर आहे डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ ॻाल्हाए थो।
1: मुंहिंजी त शराबी आहे हो अखियुनि जा ठार ताबेदार
0: ऐं मां त वरी कुझु माण्हू अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि जेके कूड़ ॻाल्हाईंदा त उन्हनि खे न फ़ख़्रु महसूसु थींदो त असां कूड़ ॻाल्हायो आहे ॾिसो ॾिसो मां केॾो भलो कमु कयो आहे पर हालांकि इहो भलो कमु न आहे बाबा कूड़ घटि ॻाल्हाईंदा कयो ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त बिल्कुलु मूंखे ॿुधायो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणण वारा माण्हू सफ़ा सुहिणा थी विया आहिनि इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिन जिन लॻाई आहे मां उन्हनि खां पुछा कयो उन्हनि चयो वाह साईं वाह अहिड़ो प्रोडक्ट असां कॾहिं कोन लॻायोसीं जेको असां हाणे लॻायूं था यानी डी स्किन ब्यूटी क्रीम।

जहाँ फरीद भाई लिखते हैं कि सारे दुनिया के सारे लोग आपको अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ आपका रब ही है जो आपको अपने फायदे के लिए चाहता है। जो इस बात से एग्री करता है वो रिएक्ट करें दिल लगाकर। दिल लगाकर तो खैर आप मेरी पोस्ट को रिएक्ट कीजिएगा, और वैसे हम एग्री करते हैं इस बात से। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और उनके अलावा नसीम गुलाम भाई कहते हैं, सॉन्ग सुनाए, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। माँ कोशिश क्या थी, वैसे हिनमल ताई माँ कहें भी फरमाइश कौन लगाई आ लिस्ट में, अॼु मां इहो मूड ठाहिया यस, त मां कंहिंजो बि गानो अॼु प्रोग्राम में कोन हलाईंदसि, अॻिते ॾिसूं था। थोरो बाबा फरमाइशनि ते ब्रेक लॻाईंदा कयो, ब्रेक समझो था, ब्रेक ते पेर हुजे। बिलाल अली हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरमा, आपको वेलकम कहा जाता है। कहते काश कोई मेरा भी वेट करता। जी जी बिल्कुल, आप हमारे प्रोग्राम में आया करें डेली। और संजय जी पाल हमारे साथ है, संजय जी पाल आपको भी वेलकम हो गया। और नसीम भाई कहते असां अॼु वठी वठूं था, अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां अॼु वठो था, बिल्कुल वाह वाह, वञो वञो वठी अचो वठी अचो। हिदायतुल्ला कहते कि मुझसे नहीं विसरता तुम्हारा प्रोग्राम, चाहे नूरियाबाद पर हो या 88 लाड़काना पर। वैसे मैंने भी देखा है ऐसे लोग जो कूड़ मारते हैं और अपने पर नाज करते हैं। हाँ बिल्कुल, यह गाल आए हकीकत आए अल्लाह, पर चलो खैर आ तुम बुधायो हाल अहिवाल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं था लॻायो। अच्छा ये है ठरी मीरवा से मोहम्मद इब्राहिम खास खेली, कहते अदी सदरा अच्छा कहते खैरपुर वारा कावड़जी वया आहिन, खैरपुर वारा कावड़जी वया आहिन, ईअं ई हरू भरू। चलो राज़ी ईअं थी वेंदा जॾहिं तव्हां हुननि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम खैरपुर वारनि खे तोहफ़ो ॾियो बाबा, खैरपुर वारा जल्दी में राज़ी थी वेंदा तव्हां सां। और बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ है। और ये कहते हाय मैडम आप कैसी है, प्लीज प्ले शमन का गाना। और हसन देपारजा से सिंध की रानी आप कैसी है, हसन अली हसन मेहरापुर से हमारा शो सुन रहे, ओके जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। मेहरापुर में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। टाइम हुआ है जनाब यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइट एश डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत और जवाबित लागू हैं.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान.

0: आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे।
1: ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312-34-01-287।
0: ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3141-230।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
4: जी हा, 03135525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, और जो लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली नाडी टूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद हैं।

कई कितना प्यार गाना सुनाया ॾिसो ॾिसो तो तव्हां फरमाइशूं न कंदा आहियो न पोइ मां एॾा भला भला तव्हांखे गाना ॿुधाईंदी आहियां. अगरी सो मास्टर मंज़ूर जे गाने जी बि फरमाइश हुई त मूं हीउ रेंडमली गानो जेको आहे लिस्ट में लॻाए छॾियो, हिन गाने खे ॿुधंदासीं. उन खां अलावा अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ छो ज़रूरी आहे. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाने वाले लोग बड़ी ख़ुशि हुई भई अपनी ज़िंदगी में, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा पाकिस्तान में प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन चुका है जो कि भई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल जाएगी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिनी बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फार्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बनी है. आप ये तमाम चीजें इमेजिन कीजिए कि कितने ही अच्छे कोई प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें ऐड की गई होंगी, वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी ऐड है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए. और ये जनाब 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ये नाइट क्रीम है लेकिन आपको जो रिजल्ट देगी वो फेशियल वाला देगी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर रही है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. वैसे कहते हैं ना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की मुनासिब केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप भी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन है जनाब. और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बना देगी और बेहतरीन इंतखाब भी हो सकते हैं. अगर आप अपनी जिल्द को नरम मुलायम मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं, अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं, खूबसूरती में आप हमेशा आगे रहना चाहते हैं, रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं, एक्ने फ्री स्किन चाहते हैं, बेदाग गोरी गोरी स्किन चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा क्योंकि अच्छी तरह आपकी स्किन केयर हो जाएगी और आपके जल्द के चेहरे की जो ताजगी है ना और निखार है ना वो भी वापस आ जाएगा. खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नाम नहीं होता, ये मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, बल्कि आपकी जल्द की जो मुनासिब केयर होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो रोजाना अगर आप अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि भाई आप बैठ के फेशियल लगाएं, ये करें वो करें, या फिर उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो बस एक ऐसा काम करना है आपने, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि वाकई भाई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. ये मेडिकेटेड फार्मूला है और हर स्किन के ऊपर है, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है.

जी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। हमने फरमाइश की थी नाहिद अख्तर के गाने की, मैंने शायद उस दिन या अगले दिन आपकी फरमाइश का गाना लगा लिया था। कहते हैं कि चले हाँ आपका गाना जो है ना हम सुन लेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये जनाब कहते हैं मैडम कैसी है आप, प्लीज प्ले शमन का गाना। अली हसन देपारजा से हमारे साथ हैं। बिल्कुल अली हसन भाई आपके लिए गाना लगाते हैं, थोड़ा सा सबर कीजिए जरा। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कि जदें गिफ्ट करें आप भाई छो था सभी के गुमाना था माता के गिफ्ट कर दे, बिल्कुल माता के गिफ्ट न कर दम ताकि थोड़ो खर्च करनो पवंदो। खर्च कयो वन्यो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो या केडी शराब बता सब मुंजो आसरो करे बैठा आयो मा इते दुकान खोलियो चाबला। बाबा तां सबनी जे करीबी जन स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आए, बस थोड़ो कष्ट कयो वन्यो ही वनी वठी अचो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तां के मुनासिब कीमत में मिलंदी, एडो कोई इन जो रेट कोने को एडी का इनजी कीमत कोने का जो तां अफोर्ड न करे सगो। मुनासिब कीमतूं आहिनि जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जडे तां वठंदा त तां के खबर पइजी वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो, ही सोणा सोणा थी वेंदा, समझो था।

नसीम भाई कहते हैं कि कूड़ गालहाइण पहिरियां गुनाह आ पर फाइन लगे तो मानो कूड़ गालहाइण छडे विंदा बिल्कुल तां सही था चो और किशोर भाई कहते हैं दादा तो कडे सोचो आ तोखे केतरो फाइन लगदो मां भी मड़ई वे ड्राडण अंत 3-4 हज़ार जो कूड़ तमा डेली गले मजाक ते गया कोशिश कंदा आहियूं त कूड़ न ॻाल्हायूं समझो था कोशिश कंदा कयो अच्छा रिज़वान भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ अच्छा नसीम भाई कहते हैं कि वक्त बदलजी वेंदो हालतूं भी बदलजी वेंदियूं पर जेके दिल में घर करे वेंदासीं माण्हू कॾहिं बि विसरी न आहिनि सघंदा इज़त लफ़्ज़नि सां न किरदार सां मिलंदी आहे मोहबत दुआनि सां न वफ़ा सां साबित थींदी आहे वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस अच्छा बिलाल कहते हैं कि समझ नहीं आता किसी को अपना कहूं सब अपने होकर भी पराए लगते हैं हाँ भाई हाँ या गाल आहे यो ता सही था चो ओला कड़ो गानो ना अपनो का मिला है पर असा अकेला है सो बिल्कुल उआ ही गाल असा के ते आसपास सब पांजा नजर अचन था पर अलाए छो ये दिल चवे थी ता अकेला आयो ओके सो एकड़ो ही डाडो भलो फायसा ची आवाज में गानो लगायो आजकल ही गानो मखे वणे थो सो अचो ते ने गाने के बुदू था

ना बाबा एड़ी भी गाल कोने का। अच्छा रमजान भाई भी आसरो करे बैठो आता दी मुखे डीस कंप्यूटर क्रीम गिफ्ट कर दी। अच्छा अखलाक भाई कहते हैं कि फाइबर का जमाना है, अगर सिदरा का शो सुनना चाहते हैं तो फाइबर लगायो बाबा फाइबर। और फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ आज हम पर ना जुल्म हो गया है, ना नेट चल रही है, ना वाईफाई चल रही है, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं ऑफिस में। अरे भाई हाँ ये मसला कभी कभी हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप डीस कंप्यूटर क्रीम लगाइए।

हां जी दिल बच्चे बच्चे बच्चे वाजो गानो तवां के भी सुठो लगो हुंदो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईना वा भी तांगे सठी लगंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो इन सणा सणा थी वयो अच्छा मर्द मायो सभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगन था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जगह ता खबर है त मेडिकेटेड फार्मूलो है यानी के डी स्किन ब्यूटी क्रीम के स्किन जा जे के डॉक्टर हुंदा है ना उन्होंने तैयार कयो आहे यानी कोई भी टेंशन जी गाल ना है त बाबा इनमें केमिकल हुंदो हे हुंदो हो हुंदो ता बेफिकर थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था।

हलो बाबा हलो छुट्टी करायो फायजा की वारो गानो भी लिस्ट में आए सो बिल्कुल शमन जो गानो भी बुधनासी अपास महाराज से गड मौजूद है अपास मर ताजो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया बाबा और और और और और कौन हमारे साथ ही फरवा हमारा शो सुन रही है फरवा आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर किया कर दी जरा थोड़ा टाइम बचाए हमारे पास अच्छा यानी तहां सब जिद करे वेठायो न कयो बाबा जिद न कयो जिद न कयो मोहब्बत न तो न न किशोर भास 3-4 हज़ार रही एडो ज्यादा न टेंशन न कयो परवाह की थी आप ही मुझे भी हाँ जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप तोहफा दे सकती हैं सबको दें ठीक है और मुखा आसरो न कयो बाबा सुमाटो गोपांग कहते हैं वाह सिद्रा वाह कंबर सिटी से सुन रहा हूँ वेरी नाइस थैंक यू और फायजा का गाना आपको अच्छा लगा बहुत शुक्रिया बुधूं था बाबा बुधूं था अच्छा अदो कहते तो के जड़े लगे त तू अकेलो आही तो बस दिल ते हथ रखी यह हकीकत है बहुत शुक्रिया थैंक यू अपनायत के लिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए भी क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं ओके जी और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत भी लेंगे क्योंकि हमारी जाने का वक्त करीब आ चुका है वरना

वरना तव्हां चवंदा त बाजी तव्हां त गानो ॿुधण ॾियो ई कोन था, सो तव्हांखे गानो ॿुधण ॾींदासीं ई तव्हांखां इजाज़त वठूं था। वरी तव्हां सां मुंहिंजी मुलाकात जेका थिए पई 5 बजे वारे प्रोग्राम में थिए पई, सो पंहिंजो हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा। किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जंहिंजा गानड़ा शानड़ा रहिजी विया, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध जी विरासत कंदा पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं,
2: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ करण जी साज़िश
3: आहे। सिंध जो ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे।
4: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उनजो सबूत आहे। इहो ख़्वाब ॾिसंदा सिंध जो टुरण जा हिन जा इहो ख़्वाब असां चकनाचूर कंदासीं। सिंध जा मज़दूर, बिहारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील फ्रंट ते हूंदा।
5: सिंध बार जे सॾ ते सिंध जा वकील हिकु आवाज़। मुतहद सिंध जो वाज़े पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सॾ ते। वकीलनि पारां अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी मंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणी डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि सां मुज़ाहिरा। सिंध खिलाफ़ साज़िशो बंदि करण जो मुताबिक़। दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई मुआदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुरबल आहे। परे तर्जुमान सजाद हैदर ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं सलामतीअ लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती ऐं लॉजिस्टिक सहूलियत लाइ मौजूद आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हुती हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदी वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आटो पॉलिसी 2026 जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ऐलान IMF जी मंज़ूरी बाद कयो वेंदो। आटो पार्ट्स जी बरामद वधाइण लाइ आर्मी रेडियो चैनल सां कंडड़ ऐं पंज वॾा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाहिण जी तजवीज़। बरामदी आटो पार्ट्स ते दर आदि ड्यूटी ख़त्म करण जी बि सिफ़ारिश कयल। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तसदीक करे छॾी आहे। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिसाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ A-10 बुलेट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा है?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-2525-786।
2: जी हा, 2331-2525-786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि

0: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियणु,

0: और माटली की आवाज GFM 90.4
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हा 2315525786
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638 ऐं 0312 34 01 287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2575-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे

0: हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
1: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: असां जुलता वियासीं सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शायर, अदीब, वकील।
1: सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सदर वकीलनि हिकु आवाज़ ते मुतहिद सिंध जो वाज़ह पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी जे वारे सदर ते अदालती कार्यवाहिनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारोंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो।

जा पंज शागिर्द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में फुल फंडेड स्कॉलरशिप पाण में सुभारा। कामयाब थियलनि में फैज़ा रहमान, अमृता चांडियो, मीर मुसविर अली, परजात शाहिद हसन ऐं जुनैद अहमद मेमण शामिल। वॾे वज़ीर बहादुर शाह भुट्टो स्टीम स्कॉलरशिप प्रोग्राम जी तकरीब खे ख़िताब करे चयो त स्कॉलरशिप हासिल कंदड़ शागिर्दनि साबित करे छॾियो आहे त मेरिट कंहिं बि जाग्राफ़ी हद जी पाबंद नाहे। शागिर्दनि जी कामयाबी नई तारीख़ रक़म कई आहे ऐं हुननि सॼे सिंध जो कंध फ़ख़्र सां बुलंद कयो आहे।

0: जॾहिं असां 6:30-7 बजे ते पहुता आहियूं त तमामु अमलो सवाइ हिकिड़े डॉक्टर जे बाक़ी हीअ हॉस्पिटल पूरी लावारिस हॉस्पिटल लॻी पई आहे।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने विजिट किया है। इट्स जस्ट नॉट अ विजिट, ये एक विजिट नहीं था। हमारे हिसाब से तो हमारे पूरे स्टाफ को एक तरीके से बिल्कुल पाबंद कर दिया गया, बांध दिया गया। इवनिंग के स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं, नाइट के स्टाफ को अंदर आने की इजाजत नहीं।
0: हॉस्पिटल ते 1 करोड़ रुपयनि जी बजट आहे जेका मेडिसिन जे मद में यूटिलाइज करे ऐं हुन जे बजट खे ख़तमु कयो वेंदो आहे। ऐं जेके सर्विसिस आहिनि जेके हॉस्पिटल खे जेके हिते माण्हुनि खे मिलणु खपनि ऐं अनफॉर्चुनेटली उहे हिते न पिया मिलनि।
1: अस्पताल में कोई सहूलियत नहीं है ना, जो चीज़ पूछे अवाम वो बेहतर जज होते।
0: हमने 4.5 घंटे इसमें विजिट किया है, देखा है यहाँ की कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन है।
1: आप यहाँ पर आए, हमारे अगर ऑफिस खुले नहीं है तो ये मतलब नहीं आप ताले तोड़वाएं या आप कहेंगे कुछ भी किसका करके खोलो, ये ताले तोड़ो और इसका करके देखो।
2: कल हमें आके बाहर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आके हमें हरासा किया। कोई भी बाहर का बंदा आकर मैडम को ब्लैकमेल करे या उस पर, तो हम किसी को भी हम इस चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे।
3: हम जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कोई फोन खोना तो नहीं करते ना, तो ये बाहर के लोग जो आके हमें हरासा करते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हम आज अपना रिजाइन जो है तैयार करके आए हैं कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते।
4: टंडेलयार जे DHQ अस्पताल ते DC जे छापे खां पोइ MS ऐं 37 डॉक्टर समेत 98 मुलाज़िमनि इस्तीफ़ाऊं ॾेई छॾियूं। OPDs जो बि बाइकाट। DC नूर मुस्तफ़ा लखारी चयो त अस्पताल जी जेतिरी बजट आहे उन हिसाब सां।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
0: जी हा, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252586।
3: जी हा, 2331-5525-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकर तवाखे मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसाला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसालन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए,
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
5: जी हा, 2131-5525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए जी

आप सुन रहे थे GAFM। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

मंत्री चयो आहे त सूबनि वारे मामले ते बहस जो असल हंध पार्लियामेंट आहे। अक्टूबर में क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि दौरान नवनि सूबनि वारे मामले ते बहस करायो वेंदो। इस्लामाबाद खे धार सूबो ठाहिण ते का ॻाल्हि ॿोल नाहे थी। राजधानी वारे शहर खे सूबो ठाहिण बदिरां उते हिकु नओं गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि।

कानून दानन अदीबन ऐं साफ़ियन नवन सूबन जे गालियन खे गैर ज़रूरी करार ॾेई रद्द करे छॾियो। वहदत सिंध कराची यूथ डायलॉग में सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ तारा मंज़ूर। मरसू मरसू सिंध ॾिसूं जा नारा। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार अहमद कोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंज़ूर कया त कराची खे सिंध खां धार नथो करे सघे। सिंध जा माण्हू जानियूं क़ुर्बान करे सघनि था पर धरती माउ जो विरागो बर्दाश्त न कंदा। सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी जो चवण आहे त खेस हालतूं ख़राब थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि। सिंध जे विरागे में सभ खां वॾी रुकावट पीपल्स पार्टी न पर सिंध जो अवाम आहे। पीटीआई वारा तकरीरूं त कनि था पर हुननि सूबनि जे विरागे ख़िलाफ़ वोट न ॾिनो। जमात इस्लामी जो हिकु मेंबर आयो, उहो बि वोट ॾियण बदिरां भॼी वियो। सीनियर वकील शहाब सरकी, आसमा शिराज़ी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफ़र चयो त मुल्क पहिरियां ई घणो विरायल आहे, वधीक तक़सीम जूं ॻाल्हियूं मुनासिब न आहिनि। सभु तजुर्बात थी चुका आहिनि, मुल्क वधीक कंहिं तजुर्बे जी सथ नथो सही सघे।

0: जेके भी इन्हनि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुलु ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था उन जे वादानत ते वार आहे।
2: सिंधी माण्हू ईंदो, असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि असां पाठ सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियणु ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: कुझु बि थींदो सिंध वारनि खे ॾींदासीं,
5: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
6: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो करण जी साज़िश
7: आहे। सिंध जो ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे।
8: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो हाज़ ॾिसंदा सिंध जो पुराण जा इन जा इहो हाज़ जा चथा ॾिसंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील कोन थो हूंदा।

0: सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सटे वकीलनि हिकु आवाज़ थी मुतहिद सिंध जो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सटे अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारुंजर खां केची बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुखा, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढियुनि वॾियुनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंद करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM
4: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
5: जी हा, 2315-2576।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: मातली।

0: जेके भी इन्हनि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुल ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू समझनि था हुन जे वातानत ते वार आहे।
2: असां सिंधी माण्हू ईंदो असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि समाज सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियण ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: कुझु बि थींदो सिंध वारनि खे ॾींदासीं,
5: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
6: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो कंदी हिकु साज़िश
7: आहे। ग्राम असां जे नामंज़ूर आहे, धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो इहो सबूत आहे जो हाज़ ॾिसंदा सिंध जो पुराण जा हिन जा इहो हाज़ जा चटा चूर कंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील, फ्रंट हूंदा।

सिंध जे इम्कानी विरहाङे के ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सटे वकीलनि हिकु आवाज़ थी मुतहिद सिंध जो वाज़ह पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सटे अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारुंजर खां केटी बंद ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुरखास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढियुनि वॾियुनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। सिंध जे सियासतदाननि, कानूनदाननि, अदीबनि ऐं सहाफ़ियुनि सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे छॾियो। वहदत सिंध कराची यूथ डायलॉग में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। मरसूं सिंध ऐं ॾेसू जा नारा। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार अहमद कोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंज़ूर कया त कराची खे सिंध खां धार नथो करे सघिजे। सिंध जा माण्हू जानियूं क़ुर्बान करे सघनि था पर धरती माउ जो विरहाङो बर्दाश्त न कंदा। सूबाई वज़ीर सईद ग़नी जो चवण आहे त खेस हालतूं ख़राब थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि। सिंध जे विरहाङे में सभ खां वॾी रुकावट पीपल्स पार्टी न पर सिंध जो अवाम आहे। पीटीआई वारा तकरीरूं त कनि था पर हुननि सूबनि जे विरहाङे ख़िलाफ़ वोट न ॾिनो। जमायत इस्लामी जो हिकु मेंबर आहे, इहो बि वोट ॾियण बदिरां भॼी वियो। सीनियर वकील शहाब सरकी, आसमा शिराज़ी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफ़र चयो त मुल्क पहिरियां ई घणो विरायल आहे। वधीक तक़सीम जूं ॻाल्हियूं मुनासिब न आहिनि, सभु तजुर्बा थी चुका आहिनि। मुल्क वधीक कंहिं तजुर्बे जी सट नथो सही सघे।

पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई मुआहिदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुर्बल आहे। परडे॒ही तर्जुमान सजाद हैदर ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तारी ऐं सलामती लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियत ऐं लॉजिस्टिक सहूलियत लाइ मौजूद आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हौसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदी वारियूं ख़बरूं दुरुस्त नाहिनि।

लंदन में अमरीकी अडे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमरीका जे केतिरनि ई फौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमरीकी मीडिया तस्दीक करे छॾी। सीबीसी न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमरीका जा F-15 जहाज़ A-10 थंडर बोल्ट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमरीकी फौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो। ईरान ऐं अमरीका विच में वधंदड़ चिकताण सबबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आटो पॉलिसी 2026 जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ऐलान IMF जी मंज़ूरी बाद कयो वेंदो। आटो पार्ट्स जी बरामदात वधाइण लाइ आलमी वैल्यू चेन सां गंढण ऐं 5 वॾा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाहिण जी तजवीज़। बरामदी आटो पार्ट्स ते दरामदी ड्यूटी ख़तम करण जी बि सिफ़ारिश कयल। जो घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार तलबी ते वीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमिश्नर पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे तबीअ ते गैर मशरूत मुआफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो त अवां खे घुराइण जो मक़सदु वारिसनि ऐं अवाम जो एतमाद बहाल करणु आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवारानो ऐं तस्दीक आमेज़ हो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त सिंध हुकूमत केस जी शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जो नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मंतकी अंजाम ते पहुचायो वेंदो।

सिंध में मनशियात खिलाफ़ कार्रवाईयूं वधीक सराहतियूं ऐं नतीजो ॾींदड़ बणाइण लाइ मज़बूत हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। चेयरपर्सन फलियार टारकोट जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जे घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में लाॻापियल अमलदारनि जी तफ़सीली ब्रीफिंग। फरियाल टारकोट चयो आहे त सरहदी इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ते चेकिंग वधीक सख़्त कई वञे। तालीमी इदारनि जे भर पासे में मनशियात जो विकिरो ऐं इस्तेमाल कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। हाजी सिंध असांजी इजाज़त खां सवाइ तब्दील न थींदो। कच्चे जूं ज़मीनूं कंहिं वॾेरे या कंहिं ख़ासि माण्हूअ खे न ॾींदासीं। सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल हसन लंजार जे घरू मामलनि बाबति सिंध असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास खां पोइ ॻाल्हि ॿोल। ज़ियाल लंजार चयो त कराची में स्ट्रीट क्राइम वधी वियो आहे ऐं पाण बि पेट्रोलिंग कंदुसि। कच्चे में अमान सूरताल बहितर थी वई आहे। मुकमल अमन दुनिया में किथे बि नाहे। मुल्क में पिंकी खां बि वॾा मनशियात फरोश मौजूद आहिनि। इन्हनि जा नाला हींअर यादि न आहिनि। एस एस पी फिदा जामरी तशदुद केस में मुलविस हूंदो त कार्रवाई कंदासीं। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर ते तशदुद में मुलविस जवाबदारनि खे बि गिरफ़्तार कयो।

0: छा अदलिया एतिरी कमज़ोर आहे जो तव्हां हुन खे मज़बूत करणु चाहियो था? अदलिया एतिरी कमज़ोर नाहे जो हुन खे कंहिं सियासी जमायत जी हिमायत जी ज़रूरत हुजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोगरदार रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ़ जे 27 सेप्टेम्बर ते एलानियल एहतजाज ऐं लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ॿुधणी। लार्जर बेंच ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे एडवोकेट जनरल खे रोस्टम ते तलब करे अहम सवालनि जा जवाब घुरिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रिमार्क्स ॾींदे चयो त गुज़िरियल चइनि सालनि खां अदालती फैसलनि जी भजकड़ी थी रही आहे। असीं रुगो मौजूदा सूरतहाल जी न गुज़िरियल टिनि सालनि जे वाकियनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं। फैसलनि जी भजकड़ी क़बूल नाहे। पीटीआई जे लॉन्ग मार्च खे हमिलो करार ॾियण बाबति बि सवाल उथारियो वियो। केपी जे एडवोकेट जनरल चयो त उहो लॉन्ग मार्च अदलिया जे हक़ में आहे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर चयो त तव्हांजी वॾी महिरबानी, छा अदलिया एतिरी कमज़ोर आहे जो तव्हां हुन खे मज़बूत करणु चाहियो था? अदलिया खे कंहिं सियासी जमायत जी हिमायत जी ज़रूरत नाहे। ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। चइनि सूबनि जे चीफ सेक्रेटरियुनि आई जी समेत समूरनि लाॻापियल अमलदारनि खे ॿीहर ज़ाती।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
8: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

पाण वट रख तू सभई सूर संभारे ऐ दिल केर बुधंदो ही किसा कें खे परेशान कजे याद माजी खे भला छा दिले नादान कजे। अजनबी वांगे मटे रूप मुसाफिर बणजी अजनबी वांगे मटे रूप मुसाफिर बणजी दिल थी चए पान के हुन जो वरी मेहमान कजे याद माजी के भला छा दिले नादान कजे।

हू तो चाहे त छॾे शहर ही मंज़ूर वञे। हू तो चाहे त छॾे शहर ही मंज़ूर वञे, छो न दुनिया ई छॾे हुन खे बि हैरान कजे, याद माज़ी खे भला छा दिले नादान कजे। हू तो चाहे त छॾे शहर ही मंज़ूर वञे, छो न दुनिया ई छॾे हुन खे बि हैरान कजे, याद माज़ी खे भला छा दिले नादान कजे। हिकु हुजे दर्द त उन दर्द जो दरमान कजे,

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC, घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
8: 90.4। कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए,
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
9: जी हाँ 2315525786।
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।